0: बाइजा बुझा तमत तमा
1: उनका जंतु
0: मगर की उनका चेन पूरा ही एक्सो एक्सो टाने बुझना की जो है ओहो लिया लिखे रे दिल दिया फील करें
2: एफएम 90.4